रावण अन्ना करो तो तभी अच्छा मरिया करी होंगे बोलते मैं देव बोले बोले पैर टकाउंदे मिड़का रख दे संग दे झिझकते।